0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों

0: देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बँड 101.1 मेगाहर्ट्झ वर आकाशवाणीचं हे नांदेड केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत चिंतन हा कार्यक्रम। आज या कार्यक्रमात व्यवहार याविषयी चंद्रकांत धांडे यांचे विचार ऐकवित आहोत।
2: व्यवहार या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत। या शब्दाचे न्यायालयीन कामकाजाशी संबंधित विविध अर्थ आहेत। सध्या सार्वजनिक जीवनात देणे आणि घेणे या अर्थाने व्यवहार हा शब्द रूढ आहे। व्यवहारीपणा म्हणजे देणे घेणे या व्यवहारातील कौशल्य आणि हुशारी होय। व्यवहारीपणा म्हणजे व्यवहार ज्ञान, केवळ पुस्तक वाचून ते मिळत नाही। वडील माणसांच्या संस्काराने, आपल्या भोवती असलेल्या वातावरणाने आणि प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभवाने माणसाच्या अंगी व्यवहारीपणा येत असतो। केल्याने देशाटन, पंडित मैत्री आणि सभेत संचार, या योगे मनुजा चातुर्य येतसे फार, या सुभाषितात व्यवहारीपणा शिकण्याचे मार्ग सांगितले आहेत। प्रवासात वेगवेगळ्या प्रकारची माणसे दिसतात, त्यांचे वागणे, त्यांचे आचार विचार, त्यांचे रीतिरिवाज आपणास कळतात, त्यामुळे आपली आकलन क्षमता वाढते। पंडितांची मैत्री म्हणजे विद्वानांचा सहवास, या सहवासाने आपला अनुभव समृद्ध होतो। या अनुभवाने कोणत्या प्रसंगी कसे वागावे हे आपणास समजते। सभेतील विद्वानांचे विचार ऐकून आपणास शहाणपण येते, असा या सुभाषिताचा अर्थ आहे। एका जांभाराने आपल्या मुलाला आपल्या धंद्यात लक्ष घालावे असे सांगितले। मुलगा दुकानातील व्यवहार पाहू लागला। एक दिवस एका गिरायकाने बूट पसंत केला। थोडे पैसे कमी आहेत, ते उद्या दिले तर चालेल का, असे गिरायकाने विचारले। चालेल असे म्हणून मुलाने बूट खोक्यात घालून गिरायकाला दिले। गिरायक गेल्यानंतर चांभार म्हणाला, तुला व्यवहार कळत नाही, ओळख नाही, पाळक नाही, अशा माणसाला तू खुशाल माल देऊन टाकला, आता वाट पहा त्या माणसाची। मुलगा म्हणाला, बाबा काळजी करू नका, तो माणूस उद्या नक्की पैसे घेऊन येईल। कशावरून? चांभाराने विचारले। मुलगा म्हणाला, त्याला 8 नंबरचा बूट पाहिजे होता, मी 8 नंबरचा एक बूट आणि 9 नंबरचा दुसरा बूट खोक्यात घालून दिला। व्यवहारीपणा असल्यामुळे मुलाने ही युक्ती केलेली होती। तात्यासाहेब केळकरांनी जाहिरात ही 65वी कला आहे असे म्हटले होते। आता या कलेने आपल्या जीवनाची सर्व क्षेत्रे काबीज केलेली आहेत। आपला माल खपवणे हा दुकानदाराचा व्यवहार असतो, तो आपले सर्वस्वपणाला

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए।

0: गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य के सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत

0: सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप

0: पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बर्फी फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, पेपोन और सुनिधि चौहान की आवाजों में, नीलेश मिश्रा के बोल और संगीत है प्रीतम का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय्यो कहा से हुजूर।
3: आज अभिनेता जॉनी लीवर का जन्मदिन है, उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है और इसी की वजह से उन्हें स्टेज शो करने का मौका मिला और स्टेज शो की वजह से उनकी फिल्मों में एंट्री हुई और ज़्यादातर फिल्मों में हमने देखा कि हास्य अभिनेता के रोल में वो देखे गए हैं। तो जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और चित्रलोक कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ फिल्म का गाना उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज़ है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, संगीत है अजय अतुल का।

ब्रेक के बाद लीजिए, अब सुनिए यमला पगला दीवाना 2। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, कुमार के बोल हैं शरीफ दोषी का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुद्ध देसी रोमांस, इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सचिन जिगर का संगीत।

0: मेरी लव लाइफ।
1: आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। मैरी कॉम फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रशांत इंगोले का लिखा हुआ गाना, शशि सुमन का संगीत है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में आज मस्ती ही मस्ती।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: तुमसा नहीं देखा।
1: शम्मी कपूर इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमित दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी की सी गति मिली। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी।

0: दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, शमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके झटके के साथ चुलबुले और निरारे अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन।

फिल्म तुमसा नहीं देखा हिट हुई और उनके अभिनय की एक निराली स्टाइल चल पड़ी, जो सन 1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब परवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया।

सन 1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नजर डालते हैं। फिल्म प्रोफेसर, फिल्म कश्मीर की कली, जिसने एक बार फिर शम्मी की सफलता के बल्ले बल्ले की।

फिल्मालय की पेशकश थी फिल्म दिल दे के देखो, जिसके जरिए एक नई संगीतकार को मौका मिला। वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल दे के देखो। दिल दे के देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा

सन 1965 शम्मी कपूर के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगिनी गीता दुनिया से अलविदा कह गईं। उस गमजदा दिन शम्मी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे।

उनकी निजी जिंदगी में खलिश और व्यावसायिक जिंदगी में कामयाबी का परचम लहरा रहा था।

0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: सन 1982 में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार। सन 1967 में उन्होंने नीला देवी से विवाह कर लिया। एक युग समाप्त हो रहा था, सफलता की चमक धुंधली पड़ रही थी। इसी दौर में अंदाज, मनोरंजन, बंडलबाज और विधाता जैसी फिल्में आई। सन 1987 में शम्मी कपूर को कंप्यूटर की ओर रुझान हुआ। सन 1995 में उन्होंने इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी साल उन्हें मिला था लाइफ टाइम

अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार। शम्मी कपूर अपने खानदान के रोशन चिराग रणवीर कपूर के साथ नजर आए इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में। ये इनकी आखिरी फिल्म थी।

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
3: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई।

0: नौरोजी।
1: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादाभाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
2: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादाभाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादाभाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादाभाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादाभाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादाभाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादाभाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादाभाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादाभाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
3: दादाभाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
4: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
3: इसकी तुम चिंता न करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
4: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ।
3: जैसे तुम्हारे मर्जी।
2: दादाभाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादाभाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम ये हुआ कि दादाभाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादाभाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादाभाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
5: अरे भाई,

0: रे भाई कौन हो तुम? हाँ? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
1: हाँ? जी मैं दादा भाई हूँ।
2: दादा भाई? दादा भाई? दादा भाई?
1: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
2: अरे लड़कियां पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
3: अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
4: अरे जाओ कुछ और काम करो।
1: सुनिए सुनिए आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
5: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
6: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
5: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
6: मेरे साथियों साथियों हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
4: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
6: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
7: लेकिन वो कैसे?
6: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
7: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
2: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
7: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
6: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
5: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून

1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरो जी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ,
6: हाँ,
5: अरे तुमने कुछ सुना?
6: क्या क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने रामजी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: रामजी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने रामजी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारे राम जी बोला, नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो, इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिख सर हैं, जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
5: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
6: इसीलिए तो कहता हूँ, सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
5: ठीक है,
6: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
5: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में न जाकर इधर उधर घूमेंगे

0: प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
1: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
0: क्या?
1: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, न इधर उधर भटकेंगे न शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
0: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
1: अरे भाई इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
2: हाँ वल्लभ ये ठीक है।
3: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
4: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
3: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
5: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
6: हाँ भाई इरादा तो पक्का है।
5: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
6: हाँ काफी स्वयं सेवकों ने गिरफ्तारी दी, और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
5: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
6: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो वो आ ही गए।
1: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
6: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
1: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
6: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
1: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं।
6: जी,
1: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहाँ भेजने की व्यवस्था करें।
6: उससे क्या होगा
1: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं, ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
3: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में

0: किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
1: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई

0: किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
1: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
2: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
1: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
2: नहीं।
1: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
2: नहीं।
1: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
2: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
0: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी, और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
3: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
0: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: एनसीईआरटीचा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या नांदेड केंद्रावरून। आम्ही बोलत आहोत आकाशवाणीच्या नांदेड केंद्रावरून। श्रोतेहो, आता प्रसारित करीत आहोत श्रोत्यांच्या पत्रांवर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंत।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत में होते हैं गानों के क्लूज और साथ में ये भी कि आज के इस कार्यक्रम में कौन से गाने बज सकते हैं।

ये बातें आपको अंदाजा लगानी पड़ती हैं, तो आज की इबारत शुरू करते हैं। ये दो लोगों की बातचीत है। मुझे बारिश पसंद है, तुम्हें? मुझे पुहार उतनी पसंद नहीं है। मुझे जगजीत सिंह पसंद है, तुम्हें? खट्टी मीठी आंखों की नशीली बोलियां। मुझे बादलों में तस्वीरें खोजना पसंद है, तुम्हें? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। पूछो, अपने पसंदीदा गाने की कोई लाइन बताओ। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, अब तुम बताओ। उस पल मौसम पे मेहंदी रच जाए। एक और बोलूं, कभी ये मेरा मन चाहे फूलों की जहां होंस आए। अच्छा तो हम चलते हैं, जाता कहां है दीवाने। बादल बिजली चंदन पानी की दुनिया में, ओ साथी चल। बताओ ना कब मिलोगे, जब तुम पुकारो। भाई ये आज की इबारत है, और इस इबारत में बहुत सारे गाने छिपे हैं। आप जानते हैं कि इन गानों के जरिए ही आज का ये कार्यक्रम सजेगा। तो चलिए श्रोताओं के कुछ कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि लगातार श्रोताओं के कमेंट्स चले आ रहे हैं, और वो अंदाजा लगा रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि अब मजा आने वाला है, टेक्स्ट पढ़ते ही कई गीत कानों में बजने लगे हैं और आपका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता, हर पल सवालों से घेरे, लेकिन वो कौन सा गीत सुनाऊं जो पिया बस जाए तुम्हारे तन मन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज प्यारे गीतों की बारिश होने वाली है, ये इस नोक झोंक भरी इबारत से पता चल रहा है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी गानों की इस फुहार की शुरुआत इस गाने के साथ। आपको बताना है इस गाने के गीतकार कौन हैं, और साथ में ये भी, क्या आपके शहर में बरस रही है फुहार।

क्या शानदार गाना है ये, गुलजार के बोल, आशा भोसले की आवाज, खयाम की तर्ज, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब इस बारे में आए हैं और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे पता था कि ये गाना तो आज जरूरी तौर पर बजेगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ये गीत प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ सावन के मौसम में अकेलेपन और दिल की तड़प को दिखाता है। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि भाई मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आज मैं कुछ पंक्तियां लिखकर भेज रही हूं जिसे आप कार्यक्रम में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये पंक्तियां हैं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी एक दास्तान हूं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई सूरत गुजरात में रिमझिम बारिश बरस रही है, कल शाम से फिर छाए हैं बादल और मौसम सुहावना हो गया है। एक श्रोता ये बता रही है कि वो एलेक्सा पर विविध भारती सुनती हैं। हमने एक प्रोमो में भी आप सभी को ये बताया है कि एलेक्सा के जरिए कैसे विविध भारती सुनी जा सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि नगमा तलाशी की जद्दोजहमत से आजाद हैं आज, ईजाद इबारत ना खुदा ने खुद ही इसे आसान बना दिया, भाई शुक्रिया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें, एक श्रोता ये लिखते हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम में शम्मी कपूर के शानदार गाने सुनवाए गए और ये गाने हम सभी को बहुत अच्छे लगे हैं। ये हमारे एक नहीं कई श्रोताओं की बातें हैं। एक और श्रोता का कहना है कि ये बातचीत शायद दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो धुनों के बीच हुई है। सवाल बारिश का था, जवाब किसी पुराने गाने ने दिया, बादलों में तस्वीर ढूंढते ढूंढते बात दिल तक उतर आई, कुछ बोल याद आए, कुछ लम्हे और जाते जाते उसने कहा जब तुम पुकारो, बस फिर क्या था, मुलाकात कहीं खत्म नहीं हुई, एक गीत की तरह बचती रही। इस गाने को जिस गायक ने गाया है वो एक साज बजाने के लिए मशहूर थे, तो बताइए कि ये गायक कौन है और वो कौन सा साज बजाया करते थे।

भूपिंदर की आवाज में ये गाना आपने सुना, और ये जो गाना है ये सत्या फिल्म का है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि उन्होंने ये गाना पहली बार सुना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जानकार हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भूपिंदर सिंह इलेक्ट्रिक स्पेनिश गिटार ज्यादातर बजाते रहे हैं, इससे पहले वो इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार भी बजाया करते थे, पर भानु गुप्ता जी ने उन्हें स्पेनिश गिटार की तरफ मोड़ा है। विशाल भारद्वाज का संगीत था ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में जब सफेद बादल को देखता था तो सोचता था कि ये रजाई में जो रुई भरी जाती है शायद यहीं से आती है। एक और श्रोता है जो कहती है कि जब मैं शाम को छत पर वॉक करती हूँ आसमां खुला अच्छा लगता है, मैं उनमें बादलों में तस्वीर की कल्पना करती हूँ, कभी सागर जैसे कभी पहाड़ों जैसे, मुझे बादलों में कभी कभी तो गणपति भी नजर आए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भूपेंद्र जी अलग अलग तरह की आवाज, उनकी आवाज़ के टोनेशन अलग अलग हैं और दिल को सुकून पहुंचाते हैं, गिटारिस्ट के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि बादल बहुत डराते हैं, उसमें डरावने चेहरे नजर आते हैं। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि बादलों में तस्वीर ढूंढते हैं किसकी ये नहीं बता सकते, इसे राज ही रहने देते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बादलों में आकृति ढूंढने में बड़ा मजा आता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे तो हर शाम आसमान पर छाए बादलों में कोई ना कोई तस्वीर नजर आती है, कई बार बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। अच्छा भाई, जब आसमान और बादलों की बात हो रही है तो क्यों ना इस बात को शेयर किया जाए कि बचपन में जब गर्मियों के दिनों में छत पर सोते थे तो क्या आप भी आसमान में तारों को गिनते थे, तारों के बिंदुओं को जोड़कर कोई तस्वीर बनाते थे? तारों से जुड़ी हुई अपनी यादें बताइए, गर्मियों के आसमान के तारे और वो छत वाला मौसम। बहुत सारे श्रोताओं के और भी कमेंट हैं। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि एलेक्सा में डिफॉल्ट लाइव आता है और कार्यक्रम के साथ ताल मिलाकर नहीं चल पाते, 2-3 बार आजमाया था। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स में ये बात जरूर आपकी सही नजर आती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि इन दिनों जब आप सुरीला सफर में आते

ते हैं तो मैं आपका पोस्ट किया हुआ टेक्स्ट पढ़ने से बचती हूं और इस बात का इंतजार करती हूं कि कार्यक्रम शुरू हो आप पढ़ें, क्योंकि आपके पढ़ने का अंदाज अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि इतने कठिन सवाल के हम सब फेल हो जाएं। नहीं नहीं जी, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है। एक और श्रोता है जो कहती है कि जीवन की सुंदरता छोटे पल में है, एक बारिश वाला दिन, एक फुहार वाली शाम, जीवन में ये चीजें कुछ बिछड़े हुए लोगों की यादें दिलाती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है, लखनऊ से हैं, श्याम वर्ण बदरी ने संपूर्ण आकाश पर अपना अधिकार जमा रखा है, कल रात्रि तो झमाझम वर्षा हुई लेकिन आज सुबह से कांच की बूंदों की फुहार बरस रही है, ये उनका कहना है। कितनी सजीली भाषा में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा और भी श्रोताओं के कमेंट में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश करूंगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन पर धड़ाधड़ कमेंट आते हैं और कमेंट एकदम ऊपर की तरफ स्क्रॉल होते चले जाते हैं, तो कमेंट के साथ ताल मिलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक श्रोता का कमेंट बिल्कुल इसी वक्त स्क्रीन पर झलका है। वो लिखती हैं कि बिल्कुल सही, जब फ्लाइट का सफर होता है तो बादल ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत सारा दही किसी ने उड़ेल दिया है, कभी सिंह, कभी कान्हा जी, कभी बड़ा सा भालू, कभी डायनासोर वगैरह की आकृति नजर आती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पैदल चलकर स्कूल जाना होता था बचपन में, मैं और मेरी दीदी बादलों में कोई आकार देखते थे तो बड़ा मजा आता था। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि बादलों को देखकर मुझे महाकवि कालिदास का मेघदूत याद आता है। क्या बात है। चलिए अब एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार गाना है नीरज जी का ये गाना, और इस गाने से जुड़ी एक जो बात है वो ये है कि आप जानते हैं विविध भारती पर मनचाहे गीत कार्यक्रम में आती हैं ढेर सारी चिट्ठियां, वो पोस्ट कार्ड जिनमें बहुत ही आत्मीयता की ऊष्मा होती है। कितने सारे श्रोता ऐसे हैं जो बहुत ही सजीली चिट्ठियां लिखते हैं, स्केच पेन से, रंगीन स्याही से सुंदर सुंदर आकृतियां, फूल पत्तियां बनाते हैं, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बात लिखते हैं, अपना नाम, गाने के बोल, पता। बचपन में हम सभी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में सजीली चिट्ठियां भेजने की कोशिश करते थे, कभी ग्रीटिंग कार्ड बनाते, कभी जन्मदिन की बधाइयां, तो कभी कुछ और, लेकिन ये चिट्ठियां बहुत सजीली बनाने की कोशिश करते थे। आखिरी बार सबसे ज्यादा सजीली चिट्ठी आपने किसको और कब लिखी थी?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये प्रेम पुजारी फिल्म का गाना है, 1970 में ये फिल्म आई थी। नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत है। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं, प्रेम की वो खूबसूरत इबारत है जिसमें प्रकृति भी बोलती है और मन भी बोलता है। फूलों के रंग जैसे भावनाओं के रंग बन जाते हैं। इस गीत को सुनना जैसे किसी पुराने खूबसूरत खत को पढ़ने जैसा है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग कुछ चिट्ठियों को सजाकर तरह तरह की रंग वाली स्याही से लिखते थे, पर हम तो अपनी स्कूल कॉलेज के दिनों में जो नोट्स तैयार करते थे, जो फाइनल कॉपी तैयार करते थे, उसमें सुडौल अक्षरों से लाल या ग्रीन पेन से उसकी हेडिंग लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही हैं कि शादी से पहले अपने मायके में गर्मियों की छत पर सोते थे, तब 7 तारों का एक समूह देखकर अपने परिवार के सभी लोग उस समूह को जोड़कर देखते थे, क्योंकि हम परिवार में 7 लोग थे। ये जो यादें हैं ये बहुत याद आती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती पर मेरी चिट्ठी तो नहीं शामिल हुई, लेकिन फेसबुक के जरिए डिजिटल चिट्ठियां शामिल हो जाती हैं। एक और श्रोता वही याद लिख रहे हैं कि कैसे बचपन में छत पर सोते थे और सप्तऋषि ढूंढा करते थे, तब तारे बहुत स्पष्ट नजर आते थे और बहुत सारे, लेकिन आज तो कृत्रिम रोशनी ने जैसे तारों को लील लिया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने विविध भारती के मनचाहे गीत कार्यक्रम में चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक शामिल नहीं हुई है, हमें इंतजार है। इतनी सारी चिट्ठियां आ रही हैं और हर रोज इन चिट्ठियों को छांटा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी चिट्ठी शामिल हो जाएगी। एक एक चिट्ठी हमारी टीम मिलकर छांट रही है, ये बहुत गजब का काम है और सब लोग कर रहे हैं मिलकर। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत पर नहीं बल्कि चारपाई पर खुले आसमान के नीचे सोते थे और तारों को गिनते हुए पता नहीं कब नींद आ जाया करती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे बारिश पसंद है, बारिश की फुहारें भी पसंद है, पर इतनी ज्यादा बारिश पसंद नहीं है कि सैलाब आ जाए और जान माल की आंधी हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब तारे टूटते थे तो कुछ विश मांगा करते थे, 5 फल का नाम जल्दी से लेते थे, तरह तरह की विश्वास थे टूटे हुए तारों को देखने को लेकर। इसके अलावा कुछ और इतने सारे श्रोता हैं जिन्हें सप्तऋषि तारामंडल देखने का शौक था और बचपन की उनकी याद जैसे आज के इस कार्यक्रम के जरिए ताजा हो गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में माँ से पूछते थे कि कितने तारे हैं, तो माँ हमेशा जवाब देती थी आसमान में कुल 3000 तारे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि बादलों में नीला आसमान सफेद बादलों की चित्रकारी करता है और आकृति कुछ ही सेकंड में बदल जाती है। इसके अलावा बादलों के बारे में कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं और बहुत सारे श्रोता हैं जो ये इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बहुत सारी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। हर दिन यूं होता है कि कभी न कभी पुराने किसी वक्त की याद आती है या गुजरे दौर के किसी व्यक्ति की याद आती है। आज सुबह से आपको किसकी याद आ रही है?

एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेडियो सुनते सुनते वक्त ही नहीं कटता। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रोग्राम जब आप करते हैं तो पता नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं पुणे से अपने गांव भुसावल जाता हूं, माता पिता के साथ ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर जाना चाहिए लेकिन बिजली की फुर्ती के साथ बीत जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि मेरी छोटी बहन है बातूनी, दादी अम्मा उसके साथ समय का पता नहीं चलता, और यूनुस जी आप शताब्दी एक्सप्रेस हैं, आपके साथ समय बहुत तेजी से बीत जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पतिदेव के साथ समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम सुनते हुए मुझे लगता है कि वक्त थम जाए। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, 1:50 पर ही हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे, अभी बहुत सारे गाने सुनाएंगे, एटलीस्ट 2-3 गाने तो आपको सुनाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं जा रहे हैं। पर इस गाने का इस्तेमाल आम बातचीत में आप कब करते हैं और पिछली बार कब किया था ये जरूर बताइएगा। और इस मौसम में कहां पिकनिक मनाने जाने का मन कर रहा है आपका? कुछ इस तरह।

बहुत सारे श्रोता हैं जिनका मन पता नहीं कहां कहां जाने का कर रहा है। किसी श्रोता को जाना है कोंकण, किसी को मुंबई आना है। कोई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें इछावर के पास कालिया देव की एक बहुत बड़ी नदी है, वहां पिकनिक मनाने का मन कर रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां श्रोता सम्मेलन हो रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं अरे इतनी जल्दी 2 बज गए क्या? अरे नहीं, अभी नहीं बजे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और अभी तो कुछ गाने सुना रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि उन्हें सब लोगों का कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है और यहाँ स्टूडियो में मैं आपको सुना रहा हूं ये गाना। मुकेश की आवाज है। बताइएगा ये गाना किसने लिखा है।

देखिए, ये गाना बज ही रहा था कि हमारी एक श्रोता कहती है आज बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था लेकिन अभी जोरदार बारिश शुरू हो गई है तो वो रुक गई है। मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आ रहा है कि खुद को ना यूं बचाया कर, बारिश आए तो भीग जाया कर। और ये किस फिल्म का गाना है जिसके जरिए मैं आपसे साइन ऑफ करूंगा, इजाजत लूंगा, बताइए।

भाई हम कहीं नहीं जा रहे। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे और अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी जाता कहाँ है दीवाने वाला गाना हम पर लागू नहीं हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आज की ये इबारत दो लोगों की रूमानी बातचीत वाली इबारत थी। हमें उम्मीद है कि इबारत और उसमें बने हुए गाने आपको पसंद आए हैं। अब नमस्ते।

ये किस फिल्म का शीर्षक गीत है जो हम बजा रहे हैं? किस फिल्म का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम बजा रहे हैं?

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 41वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में श्री अरविंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक उत्तम शिक्षक, क्रांतिकारी और संगठक, साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी लेखन करने वाले लेखक संपादक के रूप में श्री अरविंद की ख्याति बढ़ी थी। इस काल में उनका योग मार्ग और अध्यात्म का अध्ययन भी चल रहा था, परंतु 1908 में अलीपुर की जेल में बंदी रहने के दौरान अरविंद का अध्यात्म की ओर झुकाव और भी अधिक बढ़ गया। 6 मई 1909 को अरविंद रिहा हुए। श्री अरविंद घोष से योगी अरविंद की ओर उनकी यात्रा शुरू हुई, परंतु धर्म नामक बांग्ला और कर्मयोगिन नामक अंग्रेजी ऐसे दो नए साप्ताहिक पत्र शुरू करके श्री अरविंद ने अपना प्रखर लेखन जारी रखा। 4 अप्रैल 1910 को गुप्त रूप से चंदन नगर, जो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश था, वहां श्री अरविंद जाकर रहने लगे और आगे चलकर कुछ ही समय में पौंडिचेरी में स्थायी रूप से बस गए। वंदे मातरम का एक प्रचार केंद्र ठंडा पड़ गया। लोकमान्य तिलक का मंडाले कारावास और श्री अरविंद का पौंडिचेरी चले जाना, इन कारणों से गरम दल आंदोलन काफी धीमा पड़ गया। अंग्रेजों की राजधानी भी कलकत्ता

0: से दिल्ली स्थानांतरित हो गई।
1: लोकमान्य तिलक की रिहाई के बाद एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ और सभाओं में फिर से वंदे मातरम की गर्जनाएं होने लगी। सड़कों पर, न्यायालयों में, कारागारों में वंदे मातरम का नारा लगाते समय जनता को किसी का भी भय नहीं रहा। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी युग का उदय हुआ। देशव्यापी आंदोलन को अलग स्वरूप मिला। स्वयं गांधी जी वंदे मातरम के प्रेमी थे, पर कुछ समय बाद उनके विचार बदल गए। ये अलग बात है। अहिंसक आंदोलन के काल में भी देश के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारियों की सशस्त्र गतिविधियां रुकी नहीं थी। 1927 के 18 सितंबर को राजेंद्र लाहिड़ी, 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां और 20 सितंबर को रोहन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। इन चारों पर लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने का आरोप था। काकोरी षड्यंत्र के नाम से ये क्रांतिकारी हमला प्रसिद्ध है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कवि थे। सरफरोशी की तमन्ना, ये प्रसिद्ध गीत उन्हीं का है। वंदे मातरम शब्दों वाला उनका एक और गीत भी प्रसिद्ध है।
0: कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम।
1: जेल में रहते हुए उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी वो बाद में प्रकाशित हुई और उस पर तुरंत ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। एक प्रखर क्रांतिकारी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए ही फांसी स्वीकार की।

काकोरी षड्यंत्र की तरह ही एक और चर्चित षड्यंत्र है वर्तमान बांग्लादेश में स्थित चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। बंगाली क्रांतिकारी सूर्यसेन दा और अनंत सिंह के नेतृत्व में 17-18 वर्ष के युवक युवतियों ने चिटगांव में अंग्रेजी फौज से युद्ध ही किया। क्रांति के लिए पैसा तो लगता ही है, पर हथियारों की कमी पूरी करने के लिए ही अंग्रेजों के शस्त्रागार पर हमला किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। इस छोटे युद्ध में कुछ क्रांतिकारी शहीद हुए तो बहुत से पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाकर सूर्यसेन दा, तारकेश्वर और कल्पना दत्त को फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से कल्पना दत्त की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। 12 जनवरी 1934 की रात सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाया जा रहा था। दूसरे दिन सुबह उनकी फांसी की सजा को अंजाम दिया जाना था। सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाते समय आसपास के राजबंदियों ने वंदे मातरम का जयघोष किया। सूर्यसेन दा भी वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इससे भड़के हुए अंग्रेज अधिकारियों ने सभी को बेरहमी से पीटा, पर वंदे मातरम का घोष बढ़ता ही गया। उस पिटाई के कारण सूर्यसेन दा बेहोश हो गए। उसी बेहोशी की अवस्था में सूर्यसेन दा को फांसी पर चढ़ाया गया। ये तो अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सूर्यसेन दा की फांसी के बाद बंगाल में सर्वत्र जन आक्रोश उमड़ पड़ा। वंदे मातरम के शहीदों में एक और क्रांतिकारी का पुष्प अर्पित हो गया।

0: 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक अनेक छोटे बड़े संघर्ष या आंदोलन खड़े हुए, उनमें से कुछ सशस्त्र तो कुछ निशस्त्र आंदोलन थे। होम रूल आंदोलन, असहकार आंदोलन, नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन शांतिपूर्ण निशस्त्र लड़ाइयों में भी मुख्य नारा वंदे मातरम ही था। क्रांतिकारी आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे आगे आए। तथापि भगत सिंह ने 26 अप्रैल 1929 को दिल्ली कारागार से पिता के नाम भेजे पत्र में प्रणाम शब्द की जगह वंदे मातरम शब्द लिखे थे। लाला हरदयाल, आचार्य काका कालेलकर, जमुना लाल बजाज, महादेवी वर्मा, आचार्य विनोबा भावे, इनके पत्रों में भी वंदे मातरम शब्द सबसे ऊपर होते थे। चंद्रशेखर आजाद के पत्रों में भी आरंभ में वंदे मातरम लिखा होता था। असहयोग आंदोलन के बाद के खिलाफत आंदोलन के काल में भी वंदे मातरम के नारे लगते ही थे। खिलाफत के मंच से मुस्लिम नेताओं का भी वंदे मातरम को कोई विरोध नहीं था।
1: आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिम विरोधी वर्णन नवाब के अंधाधुंध निरंकुश शासन के बारे में और किसी भी प्रकार के अनुशासन को न मानने वाले मुस्लिम सैनिकों के इतिहास के संदर्भों को लेकर ही किए गए थे। बंकिम चंद्र जी के मन में मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण नहीं था। बंग दर्शन के 1874 के पौष माह के अंक में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने लिखा था,
2: बंगाल केवल हिंदुओं का प्रदेश नहीं है, वो हिंदू मुसलमानों का प्रदेश है। आज हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो गए हैं, वे मन से भी एक नहीं है, पर बंगाल की भलाई के लिए हिंदू मुस्लिमों में एकता होना आवश्यक है। जब तक उच्च वर्ग के मुसलमानों में बांग्ला उनकी भाषा नहीं है, वे किसी परदेश में रह रहे हैं, ऐसी भावना रहेगी तब तक वे बांग्ला न लिखेंगे और न सीखेंगे, केवल उर्दू फारसी में ही वे काम चलाते रहेंगे। तब तक एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की नींव ही भाषा की एकता है।
1: बंकिम चंद्र जी की यह भविष्यवाणी 1905 के बंगाल के विभाजन के आंदोलन के समय सच साबित हुई। बंकिम बाबू को अपेक्षित हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में दिखाई देने के कारण ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन सफल हुआ। 1905 में थोपा गया बंगाल का विभाजन बाद में 6 वर्षों के भीतर अंग्रेजों को इसी एकजुट लड़ाई के कारण रद्द करना पड़ा।
0: प्रारंभिक काल में वंदे मातरम के प्रति आदर होने के कारण वंदे मातरम के उर्दू में भी अनुवाद हुए। काजी अब्दुल गफ्फार, सीमाब अकबराबादी, कवि भानु जैसे अनेक लोगों के उर्दू में किए गए अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। उनमें से एक उर्दू अनुवाद ये है।

0: पर आगे चलकर परिस्थिति बदल गई। वंदे मातरम का दबे स्वर में ही सही विरोध होने लगा।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष।

0: வந்தே மாதரம்.
1: ये थी वंदे मातरम एक जयघोष इस लघु रूपक श्रृंखला की 41वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
5: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली

0: गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने

0: और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
2: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
3: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
1: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार

0: फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर

0: दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बडबिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती से बोल रहे हैं सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मजाज लखनवी की रचना।

से हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूप के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूप

0: तुम भी जलोगे आत्मलोगे रूप के हमसे हाँ।
1: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रही हैं। अब उजाला फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: शैलेंद्र की बोल थी शंकर जयकिशन की तर्ज, मन्नाडे और साथियों की आवाज दी, फिल्म का नाम था उजाला।
1: रॉक, रॉक,
0: और अब दिल देके देखो फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत उषा खन्ना का।

0: husband and wife.
1: कबीर सिंह की आवाज, फिल्म का नाम बॉयफ्रेंड, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तरसे।

0: ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अब मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया ये गीत, फिल्म का नाम सिंगापुर।
1: ये शहर बड़ा अलबेला।

0: परियां
1: नमस्ते।
0: ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी।

0: राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये गेल्या 2 वर्षात 584 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आज दिली. हे मृत्यू सर्पदंश, सिकलसेल, गंभीर आजार, अपघात आणि आत्महत्यांमुळे झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. राज्य सरकारतर्फे आदिवासी समाजातील मुलांसाठी 500 शासकीय आणि 513 अनुदानित निवासी आश्रमशाळा चालवल्या जातात. गेल्या 2 वर्षात शासकीय आश्रमशाळेत 384 तर अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये 200 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज देशवासियांना संबोधित करणार. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त विविध विभागांमधल्या 1057 कर्मचाऱ्यांना शौर्य आणि सेवा पदकं जाहीर. पदक विजेत्यांमध्ये राज्यातल्या 79 जणांचा समावेश. यंदाच्या जनगणनेत नागरिकांना जात विचारली जाणार. सरकारकडून प्रश्नांची अधिसूचना जारी. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्या विरोधातला मानहानीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द. आणि गडचिरोलीतल्या आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे झालेल्या विद्यार्थींच्या मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं मागवला अहवाल. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया संध्याकाळी 5 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: या कहानी के माध्यम से है ना, बहुत अच्छी चीज है ये. और साथ ही ये बताइए कि तो आपको कौन से जो लेखक हैं या कौन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिनकी किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
2: जी, हमारी थोड़ी सा का लेखकों का लिखना अच्छा लगता है. हमारे जो हम ओडिशा में हमारी प्रतिभा है, बहुत प्रसिद्धि है उनकी. और उनकी उपन्यास बहुत अच्छा लगता है, जैसे जाज्ञा सेनी वगैरह बहुत अच्छा लगता है. और बहुत से हैं.
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. देखिए, आप जानती हैं, आप पढ़ती हैं, तो आपको मालूम है उनके बारे में, उनकी लेखनी के बारे में आपको पता है. तो आपके जरिए हमें भी पता चला कि कितने अच्छे लेखक हैं वहाँ पे. तो जो पढ़ना चाहेगा वो आराम से इनका लेखन निकाल के पढ़ सकता है. बहुत अच्छी चीज है ये.
2: तो एक बात बता देती हूँ जी कि हमारे हिंदी में नोवेल बहुत मैं पढ़ती थी पहले.
1: अच्छा,
2: गुलशन नंदा की पढ़ती थी.
1: अरे वाह, उनकी तो किताबों के ऊपर कितनी ही फिल्में बनी है ना.
2: बहुत बहुत बहुत. जो कटी पतंग है ना, वगैरह, ये सब नोवेल भी पढ़ चुकी हूँ, फिल्म भी देख चुकी हूँ जी.
1: जब आपने नोवेल पढ़ा उसके बाद फिल्म देखी तो और अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम जिस चीज को पढ़ते
2: हैं जानकारी,
1: बिल्कुल
2: जानकारी हो जाती थी.
1: बहुत अच्छे लेखक है, सच में बहुत अच्छा लगता है. और फिर जो ये सब चीजें होती है, इस पे जो अगर कोई फिल्म बनती है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है. तो बताइए, अब आप कौन सा गीत सुनना चाहती है?
2: मैं तो बारिश के ऊपर एक गाना सुनना चाहती हूँ, प्यासा सावन का गाना. तो गाने के गुण, गाने के बोल जरा गुनगुना दूं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुना दीजिए.
2: गाने की बोल है जी,

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो चलिए करते हैं बात और जानते हैं अभी कौन सी सखी है हमारे साथ। हेलो सहेली।
1: नमस्कार राधे राधे मैम। हेलो सहेली।
0: नमस्कार। तो बताइए पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं त्रिपुरा से संगीता देवव्रत बोल रही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा। गांव
0: अच्छा,
1: का नाम है चलदीपुर।
0: अरे वाह, तो आप त्रिपुरा से बोल रही हैं संगीता जिया। तो आप बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। मेरा एक लड़का है और हस्बैंड वाइफ, हम लोग घर में 3 लोग हैं।
0: अच्छा, तो आपको बच्चा छोटा है कि बड़े हैं।
1: मैं घर में सबसे छोटा बहू हूँ और मेरा एक ही लड़का है।
0: हाँ, तो बेटा छोटा है आपका।
1: वो बीएससी फॉर्म में पढ़ती है
0: अच्छा
1: कॉलेज
0: अच्छा बीएससी में। नहीं, बड़ा बेटा है। तो आपको कुछ याद है अपने बेटे के बचपन का, जब स्कूल जाता था तो 15 अगस्त को मनाया जाता था जिस तरह से, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है अभी, तो कुछ यादें हैं
1: तो
0: आपकी।
1: वो तो स्कूल में जाया करती थी, साथ में मैं भी जाती थी उसको लेके। तो उसको कभी कभी गाना भी गाना पड़ता थी, बताती
0: अच्छा,
1: पड़ती थी मैम।
0: हाँ, अरे वाह।
1: तो मैम मुझे गाना सुनना दीजिए। फिल्म का नाम है शारदा,
0: शारदा।
1: लता दीदी ने गाया था इस गाने को। गाने
0: हाँ,
1: का बोल है, आपका खत मिला शुक्रिया शुक्रिया।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं गुजरात से बोल रही हूँ, नीलोफर।
0: अच्छा, नीलोफर बोल रही हैं आप गुजरात से। तो बताइए नीलोफर जी, आप क्या करती हैं?
1: मेरे पापा की राशन की दुकान है, वो लेफर और आइसक्रीम ये सब भी हम लोग बेचते हैं
0: अरे
1: दुकान
0: वाह,
1: में।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: मुझे ना ले लिया सुनना बहुत अच्छा लगता है, और टीवी देखना।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपकी पसंद का कौन सा गीत है जो आज हम आपको सुनवा सकते हैं?
1: मुझे ना दामिनी पिक्चर का गाना सुनना है,
0: कौन सा वाला?
1: बिन साजन छूना छूनू
0: आहा,
1: मैं वादा कैसे भूलू,
0: वाह।
1: करता है ये मेरा मैं उनके गगन को
0: गगन को छू
1: छूलू।
0: लीजिए आप,
1: आया
0: आपके पसंद का ये गीत
1: सागर
0: हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ तो पहले आप अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए।
1: मेरा नाम है कल्याणी सुर्वे। मैं वसई से हूँ।
0: अच्छा, आप वैसे ही से बोल रही हैं। तो बताइए कल्याणी
1: हाँ
0: जी, आप कुछ जॉब करते हैं या आप घर पे रहती हैं?
1: हाँ मैं जॉब पे हूँ।
0: अच्छा, तो आप बताइए
1: घर
0: आपके घर में कौन कौन है?
1: में हम 3 जने हैं, मेरे हस्बैंड पेशावर में,
0: अच्छा, तो बेटा छोटा है कि बड़ा?
1: नहीं बड़ा है,
0: बड़ा।
1: कॉलेज जाता है।
0: अच्छा, आपकी कुछ यादें होंगी 15 अगस्त की कि आप किस बेटे को जब भेजती थी स्कूल, तो जब 15 अगस्त होता था तो आप किस तरह से तैयारी
1: हाँ,
0: करती थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी, या फिर आपकी अपनी खुद की यादें हो?
1: या मेरी खुद की यादें थी कि स्कूल में 15 अगस्त को जाना बहुत अच्छा लगता था, कि
0: हाँ।
1: वो एक अलग ही ये रहता था माहौल। टीचर्स बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां वाइट कलर के पहन के आते थे, फिर
0: अरे वाह।
1: जो भाषण होते थे, फिर पोइट्री स्कूल बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि आपकी 15 अगस्त की याद आती तो पहले स्कूल की याद ही है।
0: तो आप भाग लेती थी या आपने पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, जो भी अगर कुछ फंक्शंस में?
1: नहीं इतना तो नहीं, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता था बोलने से।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, आपके पसंद का कोई गीत?
1: मुझे क्या हुआ तेरा वादा गाना सुनना है,
0: अच्छा,
1: तो हम किसी से कम नहीं मिले।
0: अरे वाह, ठीक है, चलिए मैं आपको आपके पसंद का गीत सुनवाती हूँ।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हाँ, मैं सोनू वर्मा बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से बोल रही हैं आप। आपके घर में कौन कौन है पहले बताइए तो।
1: हाँ, घर में मम्मी पापा हैं और हस्बैंड है, बच्चे हैं।
0: बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: हाँ, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा है।
0: अच्छा, तो आप कुछ अपनी यादें आप बताएंगे 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त आ रहा है।
1: 15 अगस्त में बचपन में बहुत उत्साह रहता था स्कूल जाने का, क्योंकि वो जो पीले वाले लड्डू जो मिलते थे
0: मुझे मुझे यही सुनना था वो पीले वाले लड्डू की मुझे बहुत, क्योंकि ना उसके उसके वजह से हम बहुत ज्यादा कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि वो पीले लड्डू मिलेंगे, वो 15 अगस्त आ रहा है तो हमें जाना जरूरी है।
1: जी, वो 15 अगस्त पे ही उसका बहुत ज्यादा वो रहता था। उसके लिए क्या है कि जरूर तैयार होते थे कि आज लड्डू मिलेंगे, और दो मिलते थे। तो
0: हाँ, वो लड्डू बहुत ज्यादा कीमती
1: एक
0: होते थे ना।
1: जी बहुत ज्यादा कीमती और बहुत अच्छे होते थे। जो टेस्ट उस समय रहता था, बाकी नहीं मिलता था टेस्ट वो।
0: बिल्कुल, चाहे हम बाद में कितनी भी मिठाई खा लें लेकिन वो जो एक स्वाद था ना वो एकदम मन में
1: जी
0: बस जाता था, है ना। और
1: जी
0: साथ ही वहां पे जाके जब देश गान होता था ना तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे ना,
1: हाँ,
0: जब
1: बहुत
0: जनगण
1: अच्छा
0: मन
1: लगता
0: शुरू
1: था
0: होता
1: उस
0: था।
1: समय की। जो 15 अगस्त थी बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत उत्साह रहता था, एक खुशी रहती थी कि साहब 15 अगस्त आ रही है। उस
0: जाना है
1: चीज
0: हमें।
1: की यूनिफॉर्म गंदी रहती थी, तो रात को इसको धोना है, सुखाना है, ताकि सुबह साफ ड्रेस पहन के जाएं।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगता था एकदम देख के, माहौल पूरा एकदम दिल खुश हो जाता था, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा मैं उसी समय पे पहुंच गई हूँ।
0: देखिए आप अपने
1: जी
0: बचपन वाले 15 अगस्त से पहुंच गई ना बात करते
1: जी
0: करते।
1: मम्मी से सीखा है मैंने रेडियो सुनना, मेरी मम्मी आज भी रेडियो सुनती है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, उन्हें बहुत पसंद है रेडियो। जब भी रेडियो पे अच्छा गाना सुनती है तो मुझसे बोलती है कि तुम भी फोन लगाना, ये गाना सुनना। मैंने हाँ बिल्कुल सुनूंगी, और मेरी मम्मी को बहुत खुशी
0: जी
1: होती है अगर हेलो शैली में मेरी
0: हाँ,
1: बात होती है तो। जी,
0: बहुत अच्छी बात है। आप बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती
1: कुमार शानू की आवाज है, कितनी
0: हैं?
1: हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने
0: हाय,
1: की।
0: क्या गीत सुना है आपने, बहुत
1: जी,
0: बढ़िया। चलिए आप सुनाते हैं, आपको
1: मेरी
0: पसंद
1: मम्मी का
0: आप।
1: नाम ले लूं?
0: हाँ बिल्कुल, ले लीजिए।
1: मेरी मम्मी का नाम है सोरम बाई, और ये गाना जिसके लिए है उनका नाम है संजय महेश्वरी।
0: अच्छा ठीक है, तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, तो
1: हेलो सहेली,
0: पहले तो आप बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं उज्जैन से भारती भटनागर बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: मुझे किचन में खाना बनाना और साफ सफाई करना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको साफ सफाई अपने घर में रखना बहुत पसंद है,
1: हाँ, बहुत
0: तो
1: पसंद है।
0: किचन में आपको खाना बनाना पसंद है। तो कोई ऐसी बहुत ही अच्छी सी जो डिश आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाती हैं, कौन सी है वो?
1: दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती हूँ
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे
0: हाँ जी,
1: पोते को भी दाल चावल बहुत पसंद है, इसलिए
0: अच्छा, तो आपका पोता है कितना बड़ा?
1: वो 13 साल का है।
0: 13 साल का है, यानी 15 अगस्त की
1: जी
0: तैयारियां चल रही होंगी, है ना, स्कूल में।
1: जी इसलिए तो मेरा नाम भारती है, मेरा भी जन्मदिन 15 अगस्त को है ना। हाँ,
0: अरे वाह, बहुत
1: 15 अगस्त
0: बढ़िया,
1: को
0: और आपका
1: दिया
0: नाम भी शायद इसीलिए भारती रखा गया है।
1: भारती रखा गया है। हाँ, चिल्ली भारती रखा गया
0: बहुत बहुत
1: है।
0: बहुत बधाई हो आपको,
1: बहुत खुशी
0: जन्मदिन
1: हुई
0: की
1: आज
0: अग्रिम
1: आपसे मेरे फोन
0: बधाइयां।
1: लगा, इतनी खुशी हुई।
0: तो आप बताइए,
1: हाँ,
0: आज हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं जो आपको पसंद हो?
1: मुकेश दत्ता की आवाज में कभी कभी वाला लगा, कभी पिक्चर लगाना।
0: अच्छा, कभी कभी वाला गाना।
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। तो
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं राजगढ़ शहर से बोल रही हूँ। नाम है लक्ष्मी वर्मा। हाँ,
0: तो बताइए लक्ष्मी जी, आपको क्या करना बहुत पसंद है?
1: हमको बहुत पसंद है, हर चीज पसंद है। और ये जो सावन का महीना चलता है ना,
0: सावन बहुत पसंद है आपको, है ना?
1: बहुत पसंद है
0: सावन का
1: हमको।
0: महीना पसंद है, यानी आपको बारिश बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत बारिश पसंद है। और अब तो बहुत सारा पानी गिरा तो ऐसा लगता है कि दिन भर पानी में भीगो तो और अच्छा लगता
0: यानी भीगना पसंद है आपको, है ना?
1: है। हाँ, भीगना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में भीगो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत सहेली
0: बिल्कुल।
1: की भी आज अपन को महसूस होती है, यार आज अपनी सहेली रहती तो कितना अच्छा लगता है साथ
0: हाँ,
1: में।
0: हर मौसम को हम उसका आनंद उठाना चाहिए ना, लेकिन
1: आपको
0: आनंद सावधानी के साथ उठाना चाहिए।
1: मेरी सिस्टर का नाम बताना चाहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारी सिस्टर का नाम है सोनू वर्मा, भैया का नाम है उसका एक तो रोहित है, और जीजा का नाम है संजू वर्मा।
0: अरे वाह,
1: हम गाना सुनने चाहते हैं, कहो ना प्यार है।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, पहले
1: हेलो सहेली।
0: बताइए अपना नाम और फिर बताइए अपने शहर का नाम।
1: मैं वसई से उज्ज्वला नीलेश भरत बोल रही हूँ। मैं वसई में रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आप उज्ज्वला जी बोल
1: हाँ,
0: रही हैं, तो ये बताइए उज्ज्वला जी आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, दोनों सब लोग हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है,
0: अरे वाह,
1: और बेटा 8th स्टैंडर्ड में है।
0: यानी पढ़ाई चल रही है अभी। तो 15 अगस्त
1: पढ़ाई
0: आने
1: चल
0: वाला
1: रही
0: है,
1: है,
0: कैसी तैयारियां चल रही हैं?
1: अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करवाते हैं छोटे बच्चों के।
0: अच्छा, आपकी सोसाइटी में भी होता है ये सब चीजें?
1: हाँ,
0: तो स्कूल में तो एक अलग तरीके से होता होगा ना, तैयारियां भी आप अच्छे तरह से करते होंगे, और साथ ही बच्चे के स्कूल में है तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसी चीज में?
1: नहीं इस साल तो उसने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, जाना
0: लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा ना।
1: जरूर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो क्योंकि
1: जी,
0: वहां
1: हाँ
0: पर जाके जो माहौल देखते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपने देश का
1: बहुत
0: त्योहार है
1: अच्छा,
0: ये।
1: बहुत अच्छा लगता है सच।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश चल रही है, तो सबके सज्जन सावन में ये गीत सुनना है।
0: ठीक है, चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, तो
1: हेलो सहेली,
0: बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं धन्नो जायसवाल बोल रही हूँ, झांसी से। हाँ
0: अच्छा, झांसी से बोल रही हैं आप। तो
1: जी,
0: बताइए आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है।
1: हमको घर का काम करना अच्छा लगता है, हाउस वाइफ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको गाना सुनना अच्छा लगता है। आपको थोड़े से बचपन में आपके ले जाते हैं। आप जब छोटी रही होंगी तो आप 15 अगस्त जैसे अभी आ रहा है तो आप कैसे मनाती थी उसे।
1: तो मैडम हम तो बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था। टीचरें सबसे गाना गवाती थी, झंडा
0: अच्छा,
1: उठता था,
0: हाँ
1: नाश्ता वाश्ता मिलता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: वो पीले लड्डू की याद है आपको।
1: हाँ, पूरे पीले लड्डू हमारे यहाँ, तो हम वहाँ
0: हाँ
1: के हैं ना, मिर्जापुर के हैं, तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह से सब कुछ बांटते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे मैडम।
0: और
1: हाँ,
0: झंडा
1: लड्डू
0: फहराया
1: मिलते
0: जाता
1: थे,
0: था, है ना।
1: झंडा फहराया जाता था। सुबह सुबह चले जाते थे हम लोग, कोई स्कूल सुबह 7 बजे का रहता था, मगर उस दिन बहुत जल्दी जाते थे।
0: हाँ, सुबह सुबह जाके वहां पे कितना अच्छा लगता था ना, जब जब देश गान होता है ना उसके बाद कितना अच्छा लगता है
1: हाँ,
0: सुन के।
1: बहुत अच्छा लगता। अभी भी कभी कभी जब गाने आते हैं रेडियो में, कभी कभी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा लगता है। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज।
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: जरा ध्यान से सुनिए। अरे स्टूडियो का फोन लगातार बज रहा है, आपके संदेश हम तक पहुंचा रहा है। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी सी है। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना मत भूलिएगा। और हमारे जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती,
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है अब गम नहीं।
2: जिंदगी एक कहानी ही तो है। हम आसपास जो देखते हैं हमारी कलम से शब्द बनकर वर्कों पर बिखर जाता है। कहानियां जीवन में न जाने कितने रंग लेकर आती हैं, है ना? कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपके चेहरे पर मुस्कान है? नहीं है तो चलिए ना सजा देते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान। जानती हूं मैं कि जीवन की आपाधापी में बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम मिस करते रहते हैं, जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियां जो हमने दादा दादी से सुनी होती हैं, नाना नानी से सुनी होती हैं। हमने न जाने कितनी कहानियां पढ़ी हैं, जातक कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, और ये सब कहानियां सुनकर पढ़कर हम सब उनमें डूबने उतराने लगते हैं ना। जी हाँ, देशभक्ति से जुड़ी भी ना जाने कितनी कहानियां हैं। अब 15 अगस्त आ गया है तो सोच रही हूँ क्यों ना इस अवसर पर आपके साथ वीरों की बातें हों, उनके परिवारों की बातें हों, उनकी वीरता की बातें हों, उनके आंसुओं की बातें हों, उनके मुस्कान की बातें हों। तो आज मेरी मानस पार्टनर कथा आपको कहानी सुनाएगी। करें कहानी शुरू? दोस्तों, मेरा नाम कथा है। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किसी आर्मी वाले से शादी करूं। किसी फौजी की फोटो देखते ही एक जोश भर जाता था। ऐसा लगता था बस अब जो कुछ करना है फौज में जाकर ही करना है, फौज के साथ ही करना है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं होता ना। सेना और शौर्य की बातें सुनकर आप सब भी गर्व से भर जाते हैं ना। एक अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ वतन ऐ वतन। तो चलिए ना क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने को।

दोस्तों, जब वीर गति पाने के बाद शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है, तो क्या केवल उसके परिवार वाले रोते हैं? ये देखते हुए क्या आप दुखी नहीं होते? आप गमगीन नहीं होते? आपके भी आंसू बहते हैं ना? कितना खराब लगता है जब हम ये देखते हैं कि कुछ वीर शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, कोई छोटे से बच्चे को छोड़कर, तो कोई बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़कर शहीद हो जाता है। उनका बलिदान कितना कुछ कहता है। हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आंखों से अता हो जाता है।

है ना, बहते हैं ना हमारी आंखों से आंसू। क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं? और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा कह

0: साथियों।
1: दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए ही उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती रहती हूं, कहीं से आंसू तो कहीं से गम बटोर कर अपनी झोली में भरती हूँ। बहुत सी कहानियां हैं उन वीरों की, उनमें से बहुत सी कहानियां मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों में उनके साथ रही हूं, उनके पास जाकर उनसे बातें की है। आज आपको उन कहानियों में से दो कहानियों से आपको मिलवाती हूँ। जी हाँ, मेजर अर्शदीप चोपड़ा और कर्नल दीक्षित के परिवार से आज आपको मिलवाना चाहूंगी, और मिलवाऊंगी मैं आपको हमारी मन्नू से। मन्नू, मनु, मानविका, मानू, बहुत सारे नाम है उसके, बड़ी प्यारी है वो। हाँ, बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको मिला देती हूँ मेजर अर्शदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहां मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं था। अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो। नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, आज तुमने ये बात छेड़कर बहुत अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है, बनोगी मेरी बहन? सर, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए। न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा? नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर। कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो? अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी। तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए? शायद मैं किसी काम आ सकूं। अच्छा चलो, बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है। वहां चलकर बैठकर बातें करें? जी भैया, जरूर। अच्छा, मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी? हाँ, बहुत पसंद है। कॉफी का मग हाथ में लेकर वे बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है। कहकर वे चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढ मड्ढ हो गए थे। सर, नहीं नहीं

भैया रुनू कौन है? रुनू कथा, रुनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब 13 साल की हो गई है। मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए। वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपी सेंध करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था, नन्ही परी सोने चली, न जाने कितनी लोरियां। उसके उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे, बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था, उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर क्या भैया? कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां, और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया। बहुत छोटी सी थी वो, मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी मेरी परी। मुझे देखकर डर गई थी, डरती है मेरी परी मुझसे। अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था और उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था, और आंसुओं के बीच इससे ज्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था, इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहां नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रुनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई, इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी, एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे। गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया। उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा डर चला गया? जी हाँ, उनकी रुनू कह रही थी, पापा पापा आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रुनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी एक बेटी से। पापा पापा, इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा। मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाऊंगी, और ना पापा मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है पापा, मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना। जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी, लेकिन अब मैं बताऊंगी, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे नहीं।

सुन रहा हूँ। फिर बोलो पापा, बोलो मेरी बच्ची, पापा कहो, कहो मुझे पापा। रूनू ने कई बार कहा पापा पापा पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, आई लव यू पापा। उनकी पत्नी शुभा के चेहरे पर भी खुशी थी, मेजर चोपड़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे, और एक प्रश्न भी था, आखिर ये हुआ कैसे? ये देखकर शुभा ने और रूनू ने कैमरे को कथा के चेहरे पर किया। मेजर सब समझ गए। रूनू ने कहा पापा, वैसे बड़ी अच्छी बुआ ढूंढी है आपने, बहुत क्यूट है कथा बुआ। कथा बुआ ने मुझे आपके बहुत सारे वीडियोस दिखाए, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। कितना दुख दिया ना मैंने आपको, आई एम रियली सॉरी पापा। नहीं नहीं बच्चे, नो सॉरी। मेरा बच्चा अब तो खाली खुश रहने की बातें कर, मैं जल्दी आऊंगा अपनी परी के पास। अरे कथा, तेरी आंखों में आंसू क्यों बहना? भैया ये आंसू भी ना मौका नहीं देखते, दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। मैं कैसे कुछ कहूं कथा, तुझे क्या कहूं, तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच अब कोई गम नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए, कुछ कर सकता हूं? भैया रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूँ अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ही दूं। क्यों? नहीं भैया आप लेट हो गए, अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन, हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियां

तो दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको एक और फौजी परिवार में लेकर चलती हूं। वहां भी हैं कुछ आंसू, कुछ मुस्कान। आइए, भावनाओं के सागर में डूबते हैं। ये कहानी है कर्नल दीक्षित, उनके प्रिंसिपल पत्नी जानवी और प्यारी सी बेटी मानविका की। मैं उसको आपकी कहानी बताऊं, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि मानू, मानविका, मन्नू, जी हाँ, वो खुद आपको अपनी कहानी कहे, आपसे सीधी बातें करें। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मानविका मुझे मिली कहाँ और कैसे मिली। बात तब की है जब मैं चैनल की ओर से एक इवेंट कवर करने के लिए नैनीताल जा रही थी। काठ गोदाम से बस में नैनीताल की ओर हम जा रहे थे। मैं मेरी सीट पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत कम लोग थे उस बस में, और वो मेरी बगल वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, न जाने क्या था उसमें जो मैं उसे देखने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की रील्स बनाने में व्यस्त तो होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोने चेहरे पर सपने संजे हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत सी बातें करने को होने लगा। अचानक वो उसने मेरी ओर देखा, देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दी। उसे देखकर मेरे मन में न जाने क्यों ये शब्द उतरने लगे।

आगे जब बस रुकी, हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, परेशान मत हो। मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहां से रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात थी शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे, कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती, मम्मी कहती, मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते, तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त, बहन, न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती, कथा दी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती। कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं? तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन ले आप कहानी, उसी की जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसकी डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्ड एंड पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़िया और परियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा, मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूँ ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से, पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा

मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा आपने कहा था ना जल्दी आओगे, कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना, तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा जब आप आएंगे ना, तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप जहाँ रहते वहां गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है पापा, मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड। हाँ मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना। हाँ और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

0: पापा, अब जब मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है? अच्छा पापा, आपको पता है आपके मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा, मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी। और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, अब तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा, मैं सोल्जर बन के परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। अरे पापा, आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपके मन्नू भी ना मम्मा जैसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई हैं। मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी, और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ। आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा, चिट्ठी बीच में छोड़कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी, ओके? पता है पापा, मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा, आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं, हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना? 2 केक बनाई है, एक हम ऑर्फिनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको, तब काटेंगे। ओके पापा, अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करते हैं, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फिनेज की बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी, हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा, अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस दिन।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू।

0: जाते जैसे अड़ियल टट्टू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: सच्ची पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी, और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए गाना सुनाया था, आलू कुचालू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी, लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्वा बड़ा सिर चढ़ा लिया तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टू, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिज्जी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिज्जी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है, लेकिन हम मन्नु कहते हैं, लक्ष्मी बाई का नाम मनु था ना। हमारी मन्नु हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई। बुआ कह रही थी ना, बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। कितना प्यार किया था।

मैंने आपको सल्यूट करते हुए कहा था, पापा आपकी तरह मैं भी देश की सेवा करूंगी। अगले हफ्ते आपको फ्रंट पर जाना था, 3 साल बाद आप घर आने वाले थे। जब आप आए, एनडीए का ब्रोशर लेकर आए थे, उसे देखकर मैं खुश नहीं हुई थी। बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। आपने एक बार कहा था ना, मन होगा तो शादी करेगी, ना होगा तो ना करेगी। लेकिन अब मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, साथ में पढ़ने वाला एक लड़का मुझे अच्छा लगने लगा है। पढ़ाई में पहले की जैसे मन नहीं लगता, प्यार के गीत सुनने में अच्छा लगता है। अक्सर ये गाना मेरे दिल में बजता रहता है।

आप पहले आते थे ना, तो मैं आपके आसपास मंडराती रहती थी, लेकिन न जाने अब बहुत कुछ बदल सा गया मेरे भीतर। आप 3 साल बाद आए और मैं कमरा बंद करके बैठ गई, डायरी में रखा हुआ निशीत का कार्ड निकाल कर देखने लगी, उसकी बातों को याद करने लग गई, भूल गई कि आप घर आए हैं। निशीत को फोन लगाकर बात करने लगी। मम्मा ने 2 बार आवाज दी। मैंने निशीत से कहा बाद में बात करेंगे, दरवाजा खोला और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जल्दबाजी में मैंने डायरी में कार्ड वैसे ही छोड़ दिया। मम्मा कमरे में आई, मैं जब ड्रेसिंग से निकली मैंने देखा वो मेरी टेबल के पास से जा रही हैं, शायद उन्होंने वो कार्ड देख लिया था। मम्मा को चुप देखकर मैंने आवाज दी, मम्मा। उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे, लेकिन उन्हें वो वैसे ही लेकर चली गई। केवल इतना कहा, पापा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। कुछ देर में जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची, आप दोनों हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुझे लगा था अब आप लोग एनडीए की बात करेंगे, या ऐसे ही किसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था मानविका। आप आगे कुछ कहते उसके पहले ही मैंने कहा था, पापा आपकी मन्नू अब मानविका हो गई। हाँ बेटे, हमारी मन्नू बड़ी हो गई है, हम उसे बच्चा ही समझते थे, लेकिन अब मानविका बन गई है भाई वो। तुम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम जो चाहो करियर चुनो। मैं कहना चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, पर कह नहीं सकी। एक उदासी सी पसर गई थी घर में। रात को जब मैं अकेली हुई, मुझे लगा मम्मा कितनी दुखी हुई होंगी, पापा कितने दुखी हुए होंगे मेरे फोकस को हटे हुए देखकर, और वो भी टीनेजर बेटी के फोकस को हटे हुए देखकर। मैं आप लोगों के कमरे में आ गई थी, फिर से वही छोटी सी मन्नू बनकर आपकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी, पापा आई एम अ बैड गर्ल। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने आप लोग को दुखी किया है ना, लेकिन अब वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे। मम्मा ने लाड़ से कहा, पल्ले मेरा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। बच्चू तू हमें दुखी नहीं करना चाहती, पर हम ही गलत थे शायद, तुझे बेटी की तरह देखना ही बंद कर दिया था हमने, बेटा समझने लग गए थे। तेरी अपनी भावनाएं और इमोशंस है बेटी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तेरी डायरी पढ़ ली थी, कार्ड देख लिया था। तुझे भी तो हक है अपने जीवन में सपने देखने का, अपने राजकुमार के सपने देखने का। कब मिलवाएगी अपने राजकुमार से? ये बातें करते हुए हम कितने भावुक हो गए थे। मैं आप लोग के साथ वहीं सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी, 10 बज गए थे, रविवार था। मम्मा ने बैटरी देते हुए कहा, कथा का 2 बार फोन आ चुका है। चाय पीकर मैं अपने कमरे में गई, बालकनी में जाकर मैंने कथा दीदी को फोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताई। कथा दीदी ने कहा, मानू मैं तो यही कहूंगी, तू प्रेम वेम के चक्कर में पड़ने के लिए भी बहुत छोटी है, इन्फैटुएशन भी तो हो सकता है ना ये, और तेरे आर्मी में जाने के सपने का क्या जो तूने बचपन से पाल के रखा था। निशित अच्छा दोस्त है, उससे बात कर। कथा दी कि इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पापा अचानक आपको ज्वाइन करने जाना पड़ा था, मैं आपसे कुछ और बात करती उसके पहले ही मेरे कॉलेज से लौटने के पहले आप चले गए थे। मैंने जब निशित से कहा, उसने कहा था मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूं। आपका लाया हुआ एनडीए का फॉर्म हाथ मिले मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मम्मा की चीख सुनी, उनके हाथ से फोन लिया, ज्ञानी अंकल कह रहे थे भाभी तुरंत आप लोग पहुंचे। मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, पर बहुत सुकून मिला था जब आपको पूरे होश में बात करते देखा। बाद में पता चला आतंकी हमले में आपका दायां हाथ घायल होकर बेकार हो चुका है। मैं लगातार रोती गई थी, आपने मुझे खुश करने की कोशिश में कहा निशित कैसा है, जवाब में मैंने एनडीए का फॉर्म आगे कर दिया, पापा मेरा सपना तो ये है अब, मेरी मनु कहकर आप अपने कटे हुए हाथ का गम भूल गए थे। इस बात को 6 महीने बीत गए। अगर मैं कभी उस आतंकी घटना का जिक्र करती दुखी होती, तो आप कहते क्या हुआ, फ्रंट पर नहीं लड़ सकता, ट्रेनिंग तो दे सकता हूं ना। और आपने सीना चौड़ा करते हुए कहा था, बेटा सैनिक की जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, मैं कम से कम तुम लोग के साथ तो हूं, और पुरानी बातों

हाँ पापा, जो बुरा है उसे याद नहीं रखना, जो अच्छा है उसे जीना है। आप लोगों ने कहा ना, मेरा सपना है आसमान में उड़ना। जी हाँ, अब मैं जूंगी अपने उस सपने को। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही न चला। मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया। जिस दिन मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ, आप कितने खुश थे, मम्मा कितनी खुश थी। मम्मा ने नारियल की बर्फी बनाई थी, वो एल्बम निकाले थे जिसमें मैं पंछी बनी हूँ, परियों जैसे उड़ रही हूँ। मैं बचपन में कहती थी ना, मुझे भी चिड़ियों जैसे उड़ना है, परियों जैसे उड़ना है। उसके बाद मैं देवलाली ट्रेनिंग पर गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना, देवलाली ट्रेनिंग से लौटते वक्त मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रिमझिम बारिश को देख रही थी, कसारा घाट को देख रही थी, नीचे ट्रैक पर काम करते लोगों को देख रही थी, दरवाजे पर खड़ी सांप के जैसे मुड़ती हुई ट्रेन को देख रही थी, कैमरे में उस खूबसूरती को कैद कर रही थी। तभी अचानक अंदर से तेज आवाजें आने लगी थी। अंदर कुछ गुंडे पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे, सब डर कर चुप बैठे थे। मुझे अचानक लगने लगा, ये वही आतंकवादी जिनके कारण आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मेरे अंदर की झांसी की रानी ने कहा, अगर आज मैं चुप रह गई तो आपका विश्वास टूट जाएगा और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकूंगी। आपकी झांसी की रानी मन्नू ने तब सचमुच में झांसी की रानी बन करके वो लड़ाई लड़ी थी। उन गुंडों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। 1 महीने आप सबके साथ रहने के बाद मुझे ज्वाइन करने जाना था। प्लेन उड़ाते हुए मैं आपके सपने को जी रही थी, अपने सपने को जी रही थी, सोच रही थी, अगर मैंने इस सपने को छोड़ दिया होता तो कितना कुछ मिस करती मैं, कितना अधूरा सब कुछ रह जाता है ना। अब तो बस इंतजार है कि देश सेवा का बड़ा मौका मुझे मिले। मुझे और उड़ने जाना है तो मेरे साथ मेरी डायरी भी जाएगी, इसलिए मैं अब उड़ने जा रही हूँ। कथा दीदी से आगे आप कहानी सुने। जय हिंद।

दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी सभी मानविकाओं पर हमें गर्व है, उनके परिवारों पर गर्व है। उन सभी के परिवारों को एक गाना समर्पित करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।

अब गम नहीं। ये थी अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग सौरव घारू का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।

पेशे खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। ये बरखा की बूंदें, ये सावन की अंगड़ाइयां, यादों की पुरवाइयां, ये मिलन की रात, शाखों पर झूमते फूलों की बहार, प्यास बनकर छलकती है ये रात। डर लगता है इन हवाओं से, न दामन से लिपट जाएं, एहसास की पहने चुनर दिल के अंजुमन में वो आए हैं। उस पर उनका ये फरमाना कि दीवाने को क्या कहिए, बड़े करिश्माई कातिल हो, कहूं तो किससे कहूं, दरमियां हमारा ही दिल है,

सावन की फुलवारियां चमन में बहार लाई है, चांद की नजीर किरणों से धुले शबनम के ये मोती हैं, आंचल में सिमटते बूंदों के खजाने, खनक बहारों की पाजीब तारों की, मेहरबान मौसम के शरारे भर देते हैं गीतों मितान मोहब्बत की, पत्थरों में भी तड़प जगा देते हैं, उफ ये मौसम किसे न अपना शैदाई बना दे।

0: ये वही मौसम है, वही मोहब्बतों के निशान, जो अक्सर तन्हा बारिशों में भीग जाते हैं। खबर होती नहीं, दिल बज़्म में आपकी बारहा चला आता है। सागर में लहरों की तरह, तूफान में किनारों की तरह, हर घड़ी मेरे सब्र को आजमाते क्यों हो। ऐसी बरसात फिर फूलों से प्यार किसे न होगा, बारहा मुझ पे ही इल्जाम लगाते क्यों हो।
1: न झट को जुल्फ से पान

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। आप आए तो हवाओं को गुनगुनाना आ गया, आप आए तो कलियों को मुस्कुराना आ गया। ये बरसती फुहारें कहीं प्यास जगाती हैं, कहीं फूल खिलाती हैं। रखा है हमने भी दिल को संभाले कि ये एहसास से खता हो न जाए, रंग मोहब्बत का फसाना मशहूर हो न जाए।

सब खताएं बारिशों की हैं, मानो कि न मानो, ये बदली का खिलखिलाना, ये आसमां का गुरूर, आंखों में रात का कजरा लगा ला।

आए हो, बुंदियां बरसेंगी, भीगेगी बहार, धीरे धीरे से आरज़ूओं का महताब चमकेगा, करार खो के भी करार आता नहीं, इश्क कहते हैं जिसे, शायद ये वही शय है।

भीगी रात में आज खामोशियों को बयां होने दो, पास बैठो कि नजरों को यकीन आ जाए। दिल आपका शैदाई है, जाए तो कहाँ जाए। आज कुछ कहने की रात आई है, बड़ी मुद्दत के बाद ये सावन की घटा छाई है। रंग फूलों का इस तरह सजाया है आपने, जैसे जमी पर आसमां बिछाया है आपने।

0: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों के बाद यानी 6:05 पर। इस वक्त संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली

0: के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का अब आप सुनेंगे शेष भाग। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

शांति माथुर और साथियों का गाया हुआ अभी आपने फिल्म सन ऑफ इंडिया का ये गीत सुना। गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब।

0: ये स्वर थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम था लैला मजनू। गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी मदन मोहन ने।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें। अब कहां
2: जाएं हम? फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।
0: फिल्म का नाम है हम साथ साथ हैं। गाने वाले कलाकार अलका याग्निक, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण। गीत को देव कोहली ने लिखा है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत, युगल स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक के, फिल्म का नाम है जोश।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जरोखा में सुनिए हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, संध्या 7:00 यानी आज संध्या 7:00 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत

की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश हम दिल्ली से रिले करेंगे। हवा महल में रात्रि 8 बजे सुनिएगा झलकी संदेशे। लेखिका निर्मला अग्रवाल, निर्देशक कमल दत्त। चित्रलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15 और फिल्मी गानों का कार्यक्रम होगा आपके लिए रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम अभिनेता शम्मी कपूर पर केंद्रित होगा। प्रस्तुतकर्ता हैं रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। प्रस्तुतकर्ता होंगे राघवेंद्र सिंह नेगी।

पर नेहा शर्मा का प्रस्तुतकर्ता होंगे राघवेंद्र सिंह नेही। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब सुनिए हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार और चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का 281वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम होगा सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुदगल। कल इसका भाग 15वां प्रसारित होगा, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। कल सुबह 7 बजे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। त्रिवेणी का प्रसारण समय कल सुबह 8:15 और कल दोपहर 2 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनते हैं कल सुबह 8:30 और कल रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार घी कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 9:30 और कल रात्रि 9:30 पर। ये विशेष फनकार कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कांबले। पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनिएगा अब गम नहीं, लेखिका अलका अग्रवाल सिगतिया, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। प्रसारण समय कल सुबह 10 बजे। कल दिन में 11 बजे स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जयघोष, इस रूपक श्रृंखला का विशेष भाग प्रसारित होगा। संकलन संपादन जयंत पत्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:05 पर और सुरीला सफर का प्रसारण समय कल दोपहर 1 बजे। कल दोपहर 2:30 पर सदाबहार नगमे, फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत प्रसारित होगा कल दोपहर 3 बजे। नाट्य तरंग में कल दोपहर 3:30 पर सुनिएगा नाटक लगन, लेखक रोमी सिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस। बॉम्बे टॉकीज में कल दोपहर बाद 4 बजे कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कल संध्या 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा, 5:30 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल संध्या 6:35 पर संध्या रंजन, संगीत सरिता में आप सुनेंगे 6:45 पर श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुदगल। और कल संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रसारित होगा और ये कार्यक्रम पेश करेंगी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कांबले। इंद्रधनुष में जिज्ञासा का प्रसारण समय कल संध्या 7:45 और हवा महल में कल रात्रि 8 बजे सुनो कहानी में पंच परमेश्वर कहानी प्रसारित होगी, इसका भाग 2 सुनिएगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वाचक स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। कल रात्रि 9 बजे आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार, जो कि विशेष फनकार स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित होगा। और कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, आलेख और स्वर आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी।
झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज और कल प्रसारित होने वाली

आशा भोसले और उषा मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जूली। इस भक्ति गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई राजेश रोशन ने।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। अब से कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में

महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ, जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और

समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नई रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो।

अरे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों के औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है।

सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्य लोए। इन पंक्तियों का भाव

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत। जवाब दो।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
2: चलते रे इश्क में पड़ जाते
1: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म, यू शो इट टू प्रभुदेवा, यू शो इट टू एवरीबॉडी।
1: ओके,
4: लड़कों ने बोला मैम देयर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियां, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
3: निकला ओ गड्डी लेके
1: 15 अगस्त 2026 शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
0: और ये है नदीम श्रवण का संगीत, समीर की बोल, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर की लिखी ये गीत रचना। गायिका है कविता कृष्णमूर्ति और फिल्म का नाम है कोयला।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
5: यह है चित्रलोक का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, आवाज अरिजीत सिंह की। इस गीत को मनोज मुंतशिर ने लिखा है और आरको ने संगीतबद्ध किया है।

यह आवाज थी अरिजीत सिंह की और फिल्म का नाम था भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। गीतकार मनोज मुंतशिर थे और संगीतकार थे आरकू। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित

0: वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे

0: संवाददाता से।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
3: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
4: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
2: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि

0: केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी उड़ीसा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। ये आवाज है महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार एन दत्ता।

महेंद्र कपूर की आवाज में अभी आपने फिल्म धर्मपुत्र का ये गीत सुना। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे एन दत्ता।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था आज और कल। गीत रचना साहिर लुधियानवी की थी, तर्ज बनाई थी रफी ने। आपके लिए प्रोग्राम की ये है अगली पेशकश। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, फिल्म का नाम चोरी चोरी।

फिल्म चोरी चोरी का दो गाना अभी आप सुन रहे थे, मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन की धुन। और लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, बोल शैलेंद्र के, धुन सचिन देव बर्मन की, स्वर मोहम्मद रफी का है और ये फिल्म है काला बाजार।

में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब खयाम साहब का संगीत मखदूम मोहिउद्दीन की रचना, युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत अजीज की फिल्म का नाम बाजार।

मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये गजल अभी आपने सुनी। फिल्म का नाम था बाजार। युगल स्वर लता मंगेशकर और तलत अजीज के थे। संगीत खयाम साहब का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: दुनिया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: सन 1982 में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार। सन 1967 में उन्होंने नीला देवी से विवाह कर लिया। एक युग समाप्त हो रहा था, सफलता की चमक धुंधली पड़ रही थी। इसी दौर में अंदाज, मनोरंजन, बंडलबाज और विधाता जैसी फिल्में आईं। सन 1987 में शम्मी कपूर को कंप्यूटर की ओर रुझान हुआ। सन 1995 में उन्होंने इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी साल उन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार। शम्मी कपूर अपने खानदान के रोशन चिराग रणवीर कपूर के साथ नजर आए इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में। ये इनकी आखिरी

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल मेरा गुस्ताख हुआ जाता है, बगावत करने को बेताब हुआ जाता है, वो न सर झुकाना चाहता है न नजरें, बस वही करना चाहता है जो उसका जी करे। अब इस गुस्ताख दिल के बेपरवाह अंदाजे बयां का रंग देखिए जनाब, ये नजरों से नजर को लड़ाना चाहता है।

आ बैठे हैं उनकी महफिल में जिनके नाम से होती है सुबह शाम। जुबां की खामोशियों का क्या कहिए, लेती हैं अब नजरें भी बस उनका ही नाम। दुनिया की रस्मों रिवाज को भुला बैठे हैं सरेआम, कर दिया है अब ये ऐलान कि उसकी महफिल में आज बैठेंगे हम अपने इस दिल को थाम।

उनकी महफिल में आ ही गए तो अब क्या सोचना कि क्या होगा अंजाम। दिल से दिल की पाती थामी, नजरों से दिया दिल का पैगाम। कभी इनकार करते हैं, कभी इकरार करते हैं, इसे कारस्तानी में किया दिल को भी बदनाम। परवाह किसे इस जमाने की, गर्वों करें अपनी नजरें इस नजर के नाम।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। नजरों की नजरों से हुई बात, खिलने लगे तारे, मुस्कुराने लगी ये रात, रोशन हुई हमारे दिल की उम्मीदें, चमकने लगी है कायनात। जानते थे हम होगा यही जब मिलेंगे हमारे जज्बात।

शर्म हया के पर्दे इन निगाहों में आने लगे हैं, वो देखकर हमको पलकें झुकाने लगे हैं। कहां तो बातें हो रही थी कि करेंगे निगाहें चार, और अब उठती ही नहीं पलकें करने को दीदार।

इश्क से बचने की बातें तो जमाने ने सिखाई हैं, उसी जमाने ने इश्क की कीमत भी समझाई है। क्या जाने किस मोड़ पर इस दिल के कदमों से उस दिल की आहट आई है। इश्क है तो जिंदगी है, ये जिंदगी इश्क की परछाई है।

छाया गीत में आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति

सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये था विविध भारती का नजराना।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाडा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपी